सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसे जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसे।

मुंदा संतोख सरमपत झोली ध्यान की करे विभूत किंथा काल कुवारी काया जुत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाद।

सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जाबुद करख करा करतारा प्रजा धरत देह अपारा जब आ करख करत हो कबहू तुम मैं मृत दे तर सब हूं।

कहूं सिमट पयो शंकर एकैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप जंपव अबर अच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संगरो दुष्ट जेते उठ बत उत पाता शकल मलेश करो रण काता जी अस तुझ तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जबन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक वार ते आए है ताके काल निकट ने आए है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट ट्राय तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो ताके ताप तनक में हर हो।

0: got your favorite song for every moment because we love you like that. East FM, Kenya's premier Asian mix.
1: लेकिन एक बात कह देता हूं, चाहे आसमान टूट पड़े, चाहे धरती फूट जाए, चाहे हस्ती ही क्यों ना मिट जाए, फिर भी मैं

0: तो बहुत काम है।
1: तो सुनो,
0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
1: wow.
0: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए। कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडी। सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
1: तुम
0: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
1: ओके, दैट्स इट।
2: Nilufer on air.